0: हम तो नया
1: ना तो मैंने तो ना थे
0: ना यार भगती अभी आते हैं
2: अकला को जीने था जन पार्सी सोते में ना मियाँ दी आवा फिरा
0: की क्या नो कर रहे हैं
3: वो तो क्या है ब्रुगी का
2: सन हाँ तो गुने बंदी तमरीने तेरे बना
4: तुम बता गधा बेटा
2: इंदे हन वही समय सुधर कैसी आई इस तोंगी क्या हम बता क मलता गधा बेटू है यक अन्य गरमाई दाता अंत गए सो बल दाए है ते पुड़िये कक सकते
5: गए था ना वही समय आतंक
2: नहीं दगो किंदने तुम बड़ा रू आगे वक सेती तुमरे बात हो तो कुसे तो त्रमंदी थे सुगने तुम्हारो कसो हो गरमाई दाता इन बातों को ते शियम हाथों कत्था तारे दरा वो या यतनी वो रा फ्राई केक
6: और ना फायदने ओ किना हम ऐसे स्थानित हैसर होई बिबरे तिले लेब डेबिस्टा हम बारू वायु लाउये बगाल को कुड़िया बाद आनी तारे मिले ये भी
2: आने इतना मुगंधे बाता महीनों बिहे गए
6: बातों को महीनों खा गए और बड़ो ना हिरे तय ना कितवारी
7: سلام عليك
6: عليكم السلام يا اوفاش وان
7: عليك اوفاش كيف هو داوين
6: الحمد لله بشامنا ناظر حتى
7: مريزو راتي هكنا ميادي ابو نوب
6: راوني ام باتا اساسني تاي حسا اكون جيغا
7: اري دال عند باروك نات با حسيكات تو هاجتي
6: باغ كاتيك تشيبو باي الا با انسروك ملو سدالون هوك